साहब वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी साहबां ने रहमत की है जो कि श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस जिथे सब दुख जाए साहबां दे प्रकाश दिहाड़े मनाउंदिआं होइआं समूह संगतां वल्लों परसों रोज तो तुरकी बाणी दे इक श्री खंड पासे आरंभ होए सन। इस वेले संपूर्णतावां होइआं हन। सतगुरु साहब जी रहमत कारण समुची हाजरी भरदिया भुल चुक की खिमा बख्शन पढ़ी सुनी बाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउण। सब संगतां नूं साहबां दे प्रकाश जड़ की लख लख वधाई होवे जी। हुण सुख आसन की सेवा होवेगी, उपरंत जो बार खुले पंडालां विच 6 बजे तिकर कीर्तन के दवान सजणगे, फिर श्री रहिरा साहब जी के पाठ आरंभ होणगे, उपरंत फिर जो कीर्तन के दवान रात 9:15 बजे तिकर चलते रहणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पास 10वीं कवे बाज बेनती चाओ भाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दुष्ट सब है तुम काबू आप हाथ दे मोहि बचाव सुखी बसे मोरो परवारा सेव सेख सब करतारा मोह रक्षा निज कर दे करिये सब बैरन को आज सिंघरिये पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यास तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेव सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हुजो सदा हमारे पछा श्रिया तो जू करे और रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे

अड़ल सुने गंग जो जाहि सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुर्दाया वई दुख दर्द पहो निकट नाम त्रिन नर के रह हो जो जा की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

साहिब जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओहकार सतगुर प्रसाद।

गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद सतीह अमृत खाए तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जेह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मणि अंदर। जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जेह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत वर लुभावे। जेह प्रसाद सुख से सोई जे मन आठ पैर ताका जास गावी जय। जेह प्रसाद सब को माने मुख ताको जास रसन बखाने। जेह प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पावर ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे। जेह प्रसाद अरोग कंचन देही लेव लाभ तिस राम स्नेही।

होए। आप सदकियां सब सात है आपे जाने अपनी मित गात जिसकी सरिस सो करने हार वरना भूज करत विचार करते कीमित न जाने किया नानक जो तिस भाव है सो

सब कोए। चंगा नाम रखाए गए जस कीरत जग ले, जेत सनदर न आवई ता बात न पुछ के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे। तेहा कोई ना सुजई जेतस गुण कोए करे।

हे जन के राम वसै मन माहे तथै भगत वसे के लोह करे आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरंकार कर कर विखे नदर निहाल तथै खंड मंडल ब्रभंड जे को कथे तो अंत न अंत तथै लो आकार जिव जिव हुकम तवै तपकार

देसौर न पे जाग रूप रेख न राग जतरद तरद सब सब पहलो अनुराग नाम काम विहीन भगत धामू न जाए सर्वान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन की नुरब अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक दे भेब ना जाने जे वेद और गते रूप रंग ना जात पासो जानी के जेब तात्मात्मा जात जग जनमरण विहीन चकर बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जह जाप आ देवनाद मूर्त आप्यो सब जथाप परम रूप रे पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचियो स्वयंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहता भूत रख भेस अंगरागन रंग जाके चा जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख भूत गर्भ गंजन सर्वंजन आद्रुप सूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्व पायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वतयन पे एक सर्व शास्त्र ना जान जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत कोड़ से मृत पुराण।

अनुभव प्रकाश निजन अनास आजान बाहु शाहान शाहो राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बारंकार कारान काल अनुभूदंग आपा अभंग गदमिता बार गुणगन उधार मुनगन प्रणाम निर्भयन काम अतुत प्रचंड मित कथा खंडालस्य कर्म आदस्य तरम सर्वा प्रणाड्यान दंड बाड्या चाचरी शांत द्वा प्रसाद

चौपाई संबत 17 सहस्रपणिज्य 8 सहस्रम 3 कहिज्य भाद्र सुधी अष्टमी रवा रातिर सदन ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जबते तुमरे दबते गुआ तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक गह मत एक न मान्य हो सिमृत शास्त्र भेद सब बापेद गह मेघ ना जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं ना गहे हो सब तुम्हें बखान्यो दोहरा

सुनो संतो कथियो अगत कहानी है मन चंचला चतुराई गिने ना बाया चतुराई ना बाया गने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जी ने इत भरम बुलाया माया ता मोहनी तने कीती जन ठगौली पाइया कुर्बान कीता तसे बिटो जन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई गिने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटम तुझे देखदा चलै ना ही तेरे नाले साह तेरे चले ना ही तस नाल क्यों चित लाइए ऐसा कम मुले ना कीचै जित अंत पछोताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा आपना आप तू जान है जी जन सब खेल तेरा क्या को आगम खाड़े आखे ता वेखे सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मोन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर के रिपा के नी सचा मनो साया जी जन सब तू पाए वेग प्रसन्न आया लब रब अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप उठा तेरा अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना कनो तिखी बालो नकीए त मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाए तब चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिब तू चलाए है तब चले जिना मार्ग पाव है कर कृपा जिन नाम लाए हैं से हर हर सदा त्याव है जिसनों कथा सुनाए हैं अपने से गुरुद्वारा है सुख पाव है कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावे तब चलाव है ए सुहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया यो तिन कह मन वसया जिन धुरों लिखया आया एक फिरे कनेरे करें गल्ला गली किन ना पाया कहे नानक शब्द सुहिला सतगुरु सुनाया पवित्र से जना जनी हर ध्याया हर ध्याया पवित गुरमुख जने ध्याया पवित माता पिता कुटम साहित सिंह पित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर ध्याया करमी सहज ना ऊप जाए बिन सहजे सहसा ना जाए न जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोब शब्द लाग हर सिंह रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए ए सहसा इव जाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो था मैले तिने जन्म जुआ हारिया ए तिशना बड़ा रोग लगा मरण मनो में सारिया वेदा में नाम तम सुने नाई फिरे जो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लाग तिने जन्म जुआ हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो था निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सत्समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवे ता सनमुख से कोई जियो रहे गुरु नाले गुर कै चरण हिरदा त्याए अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुरबिन अवरना जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुरते बेमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थे कोई पुछो बिवेखियां जाए अनेक जूनी भरम आवै मैं सतगुरु मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए राग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो मैं सतगुरु मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी दा गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जनकाओ हो नदर कर्म हो वह हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रह हो हर रंग जपिहो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख बखाणी हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी चित जिनका हिर लया माया बुरन पैरवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी गुरु का शब्द रता।

तोध आपे शिष्ट सिरजिया आपे पुन गोई सबको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड़ियाई गुरमुख दे प्राब हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखह तन तन तन गुरसोई सबको शब्द वर्तदा जो करे सोई वड़ियाई गुरमुख दे प्राब हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या

तेरा साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट, जिस दिया एह बड़िया कह नानक सुन संत, सब धरो प्यार साचा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत

संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मेल जान नानक ना प्रगास राह गूजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उद्दम जा आहार हर जीव परया सैल पत्थर मैं जंतो पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुरप्रसाद परम पद पाया सूके कासट हरिया रहा जनन पिता लोग सुध बनिता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पव करिया

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्या बह सब त्या बह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा।

दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब

वे सबा पूज खुवार जिन को सतगुर थापिया तिन मेड़ न सके कोए उना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट हुए नाओ पूजिया नाओ मनिया खंड सदा सज सोए खेहू खेह रलाइय ता जियो के होए जलिया सब सियाण पा उठी चलिया रोए नानक नाम बसारे है दर गया क्या होए श्री राग महला पहला।

काल बिन नाम बादी सब काल रहाऊ। खेती बणज नाम कियोट, पापन बीज की पोट, काम क्रोध जी मैं चोट, नाम विसार चले मन खोट। सच गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख, जल पुरायन रास कमल परीख, शब्द रते मीठे रस ईख। हुक्म संजोगी गर्दस द्वार, पंच बस मिल जोत अपार, आप तुलै है आपे बणजार, नानक नाम स्वर्ण हार। गौड़ी माला पहला। जा तू जाए कहाँ ते आवे, कहे उपजय कह जाए समावे, क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावे, क्यों बनासी सहज समावे। नाम हृदय अमृत मुख नाम, नरहर नाम नरहर निकाम, रहाओ सज अव सज जाए, मन ते उपजय मन माए समाए, गुरम मुक्तो बंधन पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए। तवर पंखे बो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तकिया गास, दिल धावे करम लिखियास। नाम संजोगी गोयल थाट, काम क्रोध फुट बिख माट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खुल हे बजर कपाट, सद मिले पूर्व संजोग। सस रहस्य पूरे हर लोग, मन तन दिल सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए। गौड़ी महला पहला। काम क्रोध माया मैं चीत, झूठ विकार जाग हित चीत।

अग्नपाणी बोले पढ़वाओ जह बांधरी एक सुहाओ दिष्ट विकारी नाई पौ पाओ आप मारे ता पाए नाओ सब मरे फेर मरना होए बिन हुए के पूरा होए परपंच व्याप रहा मन दोए थिर नारायण कर सो होए बोहत चढ़ो हो जाया व्यवहार ठाके बोहत दरगह मार सासलाई धन गुरुद्वार नानक दार घर एक ओंकार गौड़ी महला पहला उल्टे कमल ब्रह्म विचार अमृतार गगन दास द्वार त्रिपवन बेद आप मुरार रे मन मेरे भरम न कीजे मन माने अमृत रस पीजे रहाओ जन्म जीत मरण मन मानिया मन मुआ मन मन ते जानिया नजर पाई घर कर ते जानिया जत तीरथ मजन नाम अदक बथार करो के सुकाम नर नारायण अंदर जाम आन मनो तो पार कर जाओ किस जाचो नाई को थाओ नान गुरमत सहज समाओ गौड़ी महला पहला साधुगुर मिले सो मरण दिखाए मरण रहन रास अंतर पाए गर्भ निवार गगन पुर पाए मन लखाया नहीं रहना हर जप जाप रहन हर सरना राव सतगुरु मिले तो दुब दपा गए कमल विगास मन हर प्रभ ला गए जीवत मर महारस आ गए सतगुरु मिले ऐसा संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा कर मिले जम का पौ मूचा गुर मिले मेले अंकस माया कर कृपा कर महल दिखाया नानक में मार मिलाया गौड़ी महला पहला किरत पया न मिट कोय क्या जाना गया आगे होए जो तुस पाणा सोई हुआ वरना करने वाला दुआ ना जाना कमण ना जाना कर्म केवड़ तेरी दात कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहा तू एवड़दाता देवन हार तोड़ नाए तो भगत भंडार किया गर बनाया वैरास जीव पिंड सब तेरे पास तू मर्ज वल हे बख्श मिलाए जो पावे तो नाम जपाए तू दाना बिन सचा सिर मेर गुरमत दे भरोसा तेरे तन मैल नाही मन रात गुरबचनी साज शब्द पछात तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहन भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन कत कहाया प्यो पियाया अन पै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर का शब्द पछाना रहाओ जिस राम हृदय हर रास सहस बाय मिले सहबास जाय सवार साज ब्याल इत मन मुख बादे काल एन राम

अवर पंजा में एक जना क्यों राखो कारोबार मना मारे लूट नीत नीत कसे आगे करी पुकार जना श्री राम नामा उचर मना आगे जम दल बेखम कन्हा रहाओ सार मनोली रख द्वारा पितर बैठी सात नामृत केल कर नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना टाहे मड़ोली लुटिया दूरा सा धान पकड़िए एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामण लोड़े सोना रूपा मित्र लुड़न सो खादा था नानक पाप करे तिन कारण जस जम प्रबादा था गौड़ी चेती महला पहला मंदर घट पितर मंदरा काया कि जय खंता था पंच चेले वास कि जय रावल एहो मान कि जय डंडा था जोग जुगत इव पावस्ता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता राहो मुंड मुंडाया जय गुर पाईए हम गुर गिनी गंगा था त्रिपवन दान हार स्वामी एक नचेस अंधा कर पटांब गली मन लाबस संसा मूल ना जावस्ता एक चरण जे चेत लावे लभ लोभ की तावस्ता जबस निरंजन रचस माना काहे बोले जोगी कपट कन्हा रहाओ काया कमली हंस याणी मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणत नानक ना गीता जय फिर पज पछताणी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक जेकर दृढ़ चेत की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के कट नहारा ली जय रे मने को साहिब पाई रे तेत तेरे तीन गुणा संसार समावे लखन लखन जाई रे रहाओ सकर गण माया तन मीठे हम तो पांडे उचाई रे रात अनेरी सूझ नाही लाज टूक समूसा पाई रे मन मुकर तेता दुख लाग गए गुरमुख मिले वडाई रे जतन किया सोई हो आ कीर्तना मेटिया जाई रे सुबर परे ना होवे ऊण जो राते रंग लाई रे तेन की पंग तिरकी पंग होवे जे नानक तो मुड़ा कछ पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा के दो था वो हम आए अगन बिंब जल भी तिरन बजे काहे काम में उपाय मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कह न जानी उगण मेरे रहाओ कहते रुख बिरक हम चीने कहते पशु पाए कहते नाग कुली में आए कहते पंख उड़ाए हट पटन हट पटन बज मंदर भन कर चोरी घर आवे अगो देखत अगो देख पिछो देख तुझते काश पावे तड़ तीर्थ हम नाम कण देख हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा कटी मैं बनजारा जित समुद सागर नीर भरिया तित औगुण मारे दया करो किस मेरे पाप डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपे पितर वगै काती प्रणत नानक हुकुम पछाण सुख वै दिन राती गौड़ी बैरागण महला पहला रैण गवाई सोई कह दिवस गवाया काए रे जैसा जन्म कौडी बदले जाए नाम न जाने हराम का मूड़े फिर पछे पछताहे रे रहाओ सब कोई नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम कह किसे वढाई दे गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसाद मेरा सह मिले वार वार हो जाओ जियो मैं बंजारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ गुगल होवा अंब बसा सहज शब्द बिचार सहज सुभा मेरा सह मिले दर्शन रूप अपार मछली होवा जल बस जी जंत सब सार उर्वर पार मेरा सौ बस हम लोगी बाप सार नंगन होवा धर बस शब्द बस पौ जाए नानक सदा सुहागणी जन ज्योति जो समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिया है करते गा होए विचारो तित घर गाव सोहिला सबर सृजनहारो तुम गाव मेरे निर भव का सोहिला हो बहारी जाओ जस सोहिले सदा सुख होए राओ नित निर्जड़ संभाली है न देखगा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दा